0: समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदित सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में आज

प्री क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते। सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फ़ोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक उनकी कटिंग करते हैं फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी, वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
0: अच्छा।
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
1: जी, मेरा तो गिराकी काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज को नहीं आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी, सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
0: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
1: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
1: सिर्फ पोशाक होने ना वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
0: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
1: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
0: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
1: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
0: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी, थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मेरा रब से, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: आपकी
1: मैं मेरे
0: पसंद
1: पति का नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
1: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली, और राजवाड़े पे मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे हैं।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी,
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ बहुत सारे लोग गए, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका बताएंगी?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ और स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता। स्पर्श करने के बाद ही
0: सिर्फ नाड़ी देखकर आप रोग का पता लगा लेती हैं?
1: हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
0: और जो रोगी होते हैं ना, ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन्होंने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या
1: नहीं? दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा।
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
1: नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की वाली है।
0: प्रेरणा जी आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे

0: के लिए प्रेरणा बन रही हैं। और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहां से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही मैम।
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी,
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम, थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के भी नाम लिए ना, ये सब वो जगह हैं मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है ना,
1: मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम और रेडियो सुनना।
0: अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली, हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
1: हाँ मैडम, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की?
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर ही में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती, आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर ही में रहते मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं
1: जी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम, सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: एक बेटा, दुई बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: हो, हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है, इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा?

0: होती है।
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: ओह जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं।
0: सखी आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का भूल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी, और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं, और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब, या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ, क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ।
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
0: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
1: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो
0: अच्छा,
1: उन्हें क्लियर करती हूँ, और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
0: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का, और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी, और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
0: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं
1: जी।
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं
1: जी।
0: और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी, हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी, दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं
1: जी।
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट ये बनाते हैं, जो वो सब फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े
0: जी।
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक।
0: हाँ,
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ, सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से।
0: हुँ?
1: तो रात के 11 बजे तक चलता है, और फिर अपने काम निपटा के 3 में रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं, बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी देर, लेट जाती हूँ बस।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहां से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरा ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है,
0: अच्छा
1: साइड में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
0: तो फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत ज़रूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
1: जी।
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज़्यादा पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम
1: हेलो
0: कौन सा है?
1: सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं?
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और ख़ास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ, मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब
1: हाँ।
0: हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा था।
1: जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार
1: जी
0: की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने
1: जी
0: कभी किशोर कुमार का जो वहाँ पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी मैं स्थान पर गई हूँ,
0: जी
1: और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ में जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं?
1: जी
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे, और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त की करी है देवी
0: जी
1: अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से,
0: जी
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है,
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से,
0: जी
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहुशो हवाल दीवाना,
0: रफी साहब
1: रफी
0: का गाया
1: साहब।
0: हुआ।
1: जी,
0: हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 02240024662, 02228670288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 02240024662। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 02228670288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते, और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूमाते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते, और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई, असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य यह था इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल

दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विश्वैल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए, हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है, कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो

कैसे रहेगा? हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है, और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम, अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहाँ क्या अंधकार पनप रहा है, जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। और धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए। दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था? शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई, जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या

लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया, क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी, अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाएं।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि रामनारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज़ में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस

किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था। कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं। और यहाँ भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया, उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले, दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

0: कदम चूम लूं
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गाँव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली।

0: 2 जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे।